0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रावोचत् यद् एकविंशतिशताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया सम्बद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एंथनी एल्बनीस अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् संबोधयन् प्रधानमन्त्री न्यगादीत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षा

0: सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसनरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बॉस्टन नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्य चरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक

0: श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको थियो गान्धी कथा कार्यक्रम जो पूरा भयो। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
6: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
7: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एपमा

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केन्द्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डिम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल

0: समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। बरसा, एनसीआर थमा, तीन साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and Australia agree to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a 2-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government forms 7-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late supreme leader Ayatollah Ali Khamenei buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France storm into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in 4th T20 international to take 3-0 lead in 5-match series. India and Australia have agreed to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. The two countries also unveiled key initiatives to strengthen defense and maritime security ties during Prime Minister Narendra Modi's talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. The adoption of the India-Australia Joint Declaration on Defence and Security Cooperation and India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap were among the major outcomes of the 3rd India-Australia Annual Summit in Melbourne yesterday. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia."
3: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australia.

0: जोकर।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वह वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: श्रोताहरूले हामीलाई आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम चित्रांजली अन्तर्गत पुराना हिन्दी चलचित्रका गीतहरू कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ। अर्को गीत चलचित्र दिवानाबाट कलाकार कुमार सानु।

0: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुनिरहनु भएको थियो ताजेतराने कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। त श्रोता यसैको साथ आजलाई भने कार्यक्रम ताजेतरानेको निर्धारित समय यही पूरा हुँदछ। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बिहानी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। स्टुडियोको घड़ीमा समय यस बेला बिहानीको 10:30 भइसकेको छ र अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट कार्यक्रम एफएम गोल्ड।
1: नमस्कार, सुप्रभात और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं प्रियांशी और समय हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स का। यहां आप सभी के मनपसंद गीतों की सुरीली माला लिए मैं हाजिर हूं। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप हमें अपने प्रिय गीत और संदेश ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके सभी संदेशों को कार्यक्रम में सम्मिलित करें। आपके मन में हो कोई बात, कोई दुआ, कोई छोटा सा संकल्प या खास संदेश, तो उसे भी अपने प्रिय गीतों के साथ हमें अवश्य भेजिए। तो श्रोताओं, जल्द ही लिख भेजिए हमें अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और शहर और भेज दीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। मैं पुनः स्पष्ट करती हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868687 यानी 9868687 क्या पता श्रोताओं, कहीं अगली सुरमई धुन आपकी ही पसंद से चल पड़े। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस धुन के साथ।

आइए श्रोताओं, संगीत की इस दिलकश लहर के बाद अब खोलते हैं आज का दिल का मेल बॉक्स और पढ़ते हैं आपके संदेश। महाराष्ट्र से संदेश प्राप्त हुआ है हमें राजेश कुलकर्णी, गौरी कुलकर्णी और राघव कुलकर्णी का। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और बेबी आलिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। आयान बाबू भी इनके साथ हैं। धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही, इमरान, आमना, आसमा, आशु और समस्त फूलवाले फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस और सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का भी धन्यवाद। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अब युग्मिता केश और महुआ केश की फरमाइश पर कोलकाता से इनकी फरमाइश आई है इस गीत के लिए।

श्रोताओं, संगीत ने तो माहौल सजा दिया और बाहर भी सभी जगह बरसात के आसार लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपने अपने संदेशों में हमें और क्या लिख के भेजा है। तिलंगपुर कोटला दिल्ली से मधुबाला हमारे साथ जुड़ी हैं और अपना फरमाइशी गीत भी भेजा है। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना मोना, हनी यश और उनके मम्मी पापा सभी कार्यक्रम में गीत सुनना चाहते हैं। अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है इन्होंने। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान और मास्टर जीवम हमारे साथ जुड़े हैं। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू भी सुन रहे हैं कार्यक्रम। महाराष्ट्र से संदेश आया है, पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या और राजवीर लिख रहे हैं हमें कि पुणे में 4-5 दिन से बहुत बारिश हुई और अभी जरा रुकी है और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, तो इसी बहाने सुनना चाहते हैं एक मौसम वाला गीत। तो आइए पहले आप ही की फरमाइश पूरी करें एक अच्छा सुंदर मौसम वाला गीत आपके लिए।

आइए श्रोताओं फिर सुने आपकी आवाज। राम लिख रहे हैं हमें, पलवल से इन्होंने अपना गीत भी लिख भेजा है। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान फरहान और समीरा आजमीन इनके साथ हैं। आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति हमारे साथ हैं। परवेज आलम लिख रहे हैं हमें चंपारण मोतिहारी बिहार से। देवदत्त परसौलिया जुड़े हैं हमारे साथ प्रताप विहार गाजियाबाद से और अपना फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है इन्होंने। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती हमारे साथ जुड़े हैं। राम नरेश, रेखा, करण, अल्पाश, रघु, रचना, सृष्टि, सावी हमारे साथ जुड़े हैं संगम विहार नई दिल्ली से। हरिप्रसाद विश्वकर्मा जुड़े हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। और आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं एक फरमाइशी गीत। इस गीत की फरमाइश आई है हमारे पास सीटी दीवाना सुखविंदर सिंह जौड़ा इनकी दिल्ली से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र जी भी हमें इसी गीत की फरमाइश कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत जो मौसम के साथ साथ सभी को अच्छा लगता है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम दिल का मेलबॉक्स में आप सभी के मनपसंद गीतों और हार्दिक संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, हमें जल्द ही लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, संदेश, नाम और शहर और भेज दीजिए fmgoldair@gmail.com पर या व्हाट्सएप करें 9868886853 पर। तो आइए आपके कुछ और संदेश जल्दी से पढ़ लें। हिसार से राजकुमार प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। मकलापुर से नारायण इंगले, सोपानताइडे, राजकुमार और आशीष हमारे साथ हैं। नलेश्वर नगर से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल हमारे साथ हैं। शाहजी नगर महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता हमारे साथ हैं। पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉ प्रियंका, डॉ प्रशांत, डॉ प्रियम और बेबी वामिका और वाणी हमारे साथ हैं। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाई जान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप हमारे साथ जुड़े हैं। और सनावद मध्य प्रदेश से ये हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र से रंजीत कारेगावकर, कंचन, सृष्टि और समरजीत भी हमारे साथ हैं। और दिल्ली मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु, सागर और सतना, मध्य प्रदेश से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक हमारे साथ हैं। आइए श्रोताओं, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये बहुत ही मधुर गीत।

0: श्रोताओं, आपके संदेश, आपके अनुरोध और आपकी संवेदनाएं ही इस कार्यक्रम की रूह हैं। अपना प्रेम और प्रोत्साहन ऐसे ही भेजते रहिए, हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है। आपके हर संदेश में स्नेह, विश्वास और आपका अपनापन अलग ही छवि में झलकता है। मिलते हैं समाचार के पश्चात, 11:25 पर मिलेंगे और चलेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो। तब तक प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार। सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों तथा भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भविष्य के अनुरूप एक नई दिशा और मजबूत आधार प्रदान किया है। यात्रा के दौरान उच्च स्तरीय कारोबारी बैठकों से लेकर प्रतिष्ठित स्थलों तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ओमान पहुंच गए हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्कारी ने उनका स्वागत किया। डॉ जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है।
3: विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है।

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
1: और मैं अदिति।
0: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दोस्तों, कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी गहराई और सच्चाई वही जान सकते हैं जो इस रिश्ते में रहते हैं। प्यार, भरोसा और साथ, ये तीनों ही चीजें इस अनमोल रिश्ते की पहचान होती हैं। ये जिंदगी में एक ठहराव देती हैं। अब वो आपकी कोई समवन स्पेशल हो सकती है या फिर आपका जीवन साथी।
1: दोनों ही सूरत हाल में वो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो आपको आपकी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर लड़खड़ाने से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है कि शायद अब मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ देगा।
0: हो सकता है कि किसी की नौकरी जा रही हो सकता है कि कोई किसी बीमारी से परेशान हो, किसी को बिजनेस में कोई नुकसान उठाना पड़ रहा हो या फिर किसी के साथ कोई पारिवारिक समस्या हो गई हो। वजह चाहे जो भी हो, मगर हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि आदमी ना चाहते हुए भी दुख के सागर में गले तक डूब जाता है।
1: और फिर जितना अपने दुख से बाहर निकलने की सोचता है उतना ही उस दुख में और डूब जाता है, और यही वो वक्त होता है जब उसे अपने किसी ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसे उसके दुख से बाहर निकाल ले।
0: वो मोहब्बत की कुछ ऐसे मिसाल रखता है कि मुझसे कुछ ज्यादा ही वो मेरा ख्याल रखता है।

0: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
1: वैसे आजकल के नौजवानों में एक खास प्रॉब्लम है, वो ये कि पलक झपकते ही किसी से भी दिल लगा लेते हैं। जरा सा कोई लड़की हंस बोल क्या ले तो बस बज गई दिल की घंटी, और उसके बाद दिन भर बस उसी का नाम और नहीं कोई और काम।
0: हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अट्रैक्शन दोनों तरफ से हो, लेकिन वक्त चाहे जो भी रहा हो, चाहे वो गुजरा हुआ जमाना हो या आज का, प्यार खुद ब खुद हो जाना या किसी को चाह लेना शायद जिंदगी के साथ के लिए इतना आसान नहीं होता।
1: क्योंकि जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि प्यार को निभाने के लिए दोनों में से किसी एक को, खासकर मेल को, अपनी लाइफ में स्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि उसका अपना एक वजूद हो, उसकी खुद की अपनी एक पहचान हो।
0: मगर कम वक्त ये प्यार कुछ चीज ही ऐसी है जिसे इन सब बातों से कोई लेना देना है ही नहीं। मगर फिर जब वक्त और हालात इन दोनों को मिलने नहीं देते तो जीवन में बाकी रह जाती है तड़प और ढेर सारा दर्द। कौन सही था, कौन गलत, ये कौन जान सकता है।

0: पूरा दिन बस नाश्ता, लंच और डिनर। सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: मशहूर शायर मिर्जा गालिब ने कहा है कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने, यानी इंसान

0: सोशल स्टेटस में भी बहुत अंतर रहा होगा।
1: अब कहने वाले चाहे जो कहें, सच तो ये है कि दिल अगर किसी पर आ गया,
0: दिल में तो, सांसों में तो, ख्वाबों में तो, ख्यालों में तो,
1: क्या मंदिर, क्या मस्जिद और क्या काबा,
0: मेरे जज्बात में तो, मेरी पहचान में तो।

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार।

सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय चिंतन की ये त्रयी हमारी संस्कृति का सौंदर्य दर्शन है। जहाँ सत्य जीवन का आधार है, शिव उसका मंगल है और सौंदर्य उसकी अभिव्यक्ति। मध्य प्रदेश की धरती पर स्थित खजुराहो की मंदिर इसी दर्शन को शिलाओं में मूर्त रूप देते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं प्रियांशी भटनागर आपके प्रिय यात्रा वृतांत तस्वीर में आज आपको लेकर चलूंगी बुंदेलखंड की उस अनुपम धरोहर की ओर, जहां स्थापत्य, शिल्पकला और आध्यात्म सहस्त्र वर्षों से एक साथ समृद्ध हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो कभी चंदेल राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी था। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित ये मंदिर आज विश्व धरोहर के रूप में शिल्पकला की सर्वोच्च उपलब्धियों में गिने जाते हैं। आइए इस अद्भुत नगरी की यात्रा आरंभ करें, जहां प्रत्येक शिला एक कथा कहती है, प्रत्येक प्रतिमा एक भाव व्यक्त करती है और प्रत्येक मंदिर भारतीय कला की अमर साधना का साक्षी बनकर आज भी अडिग खड़ा है।

खजुराहो की कथा उस युग की है जब कला और आस्था राज सत्ता के संरक्षण में अपने उत्कर्ष पर थी। 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल राजाओं ने यहाँ लगभग 85 मंदिरों का निर्माण करवाया। समय की धारा में आज उनमें से लगभग 25 मंदिर ही सुरक्षित हैं, किंतु उनका वैभव आज भी वैसा ही विस्मय जगाता है। इन मंदिरों में शैव, वैष्णव और जैन तीनों परंपराओं का समन्वय है और इसी कारण खजुराहो आस्था के तीर्थ के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का भी अनुपम उदाहरण है। आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित खजुराहो भारतीय स्थापत्य और शिल्प कला की उन अमूल्य निधियों में गिना जाता है जिन्हें देखने देश विदेश से असंख्य यात्री यहां आते हैं, ठीक हमारी तरह। तो आइए इन मंदिरों की ओर बढ़ें, जहां पत्थरों को भाव भक्ति और जीवन की अनुभूति भी दी गई। पर उससे पहले चलिए इन सुरों में लीन हो जाएं।

खजुराहो के मंदिरों की यात्रा आरंभ होती है पश्चिमी मंदिर समूह से, खजुराहो के सबसे विशाल और सर्वाधिक संरक्षित परिसर से।

आइए आरंभ करें कंदारिया महादेव मंदिर से। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर खजुराहो की स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। इसकी ऊंची शिखर रचना पर्वत की भव्यता का आभास कराती है और इसकी संरचना नागर शैली की परिपक्वता को दर्शाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं लक्ष्मण मंदिर पर, जो भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो के प्राचीनतम और सबसे सुंदर संरक्षित मंदिरों में से है। इसके समीप ही स्थित है विश्वनाथ मंदिर, उसके सामने बना है नदी मंडप और देवी जगदम्बी मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर इस परिसर की स्थापत्य विविधता को दर्शाते हैं। चित्रगुप्त मंदिर विशेष रूप से सूर्यदेव को समर्पित है और खजुराहो के मंदिरों में ये अपनी अलग पहचान रखता है। श्रोताओं, पश्चिमी समूह से आगे बढ़ते हुए खजुराहो के अन्य मंदिर समूह भी देखने योग्य हैं। पूर्वी समूह के पार्श्वनाथ और आदिनाथ जैन मंदिर अपनी शांत गरिमा और उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं दक्षिणी समूह की ओर चले तो दूलादेव और चतुर्भुज मंदिर स्थापत्य यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इन मंदिरों की रचना में बलुआ पत्थर का सुंदर प्रयोग हुआ है। ऊंचे शिखर, गर्भगृह, मंडप और अलंकृत द्वार भारतीय नागर स्थापत्य की विशेषताओं को दर्शाते हैं और हमें उस युग की अद्भुत निर्माण कला से भी परिचित कराते हैं, जहां पत्थर भी अपनी कहानी कहते प्रतीत होते हैं।

0: आज तो पार्टी चाहिए,
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी।
4: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताहरू, यहाँहरूलाई यो अघिल्लो गीत सुनाइरहेका छौ कलाकार बनिका प्रधानको आवाजमा।

0: यसरी परिवर्तन गर्नु पर्यो। तिमीले ठिक भन्यौ, यसरी नै म यहाँ कतिपय प्रश्न राख्छु, तिमीहरूले परिवर्तन गरेर बताऊ। बेटा
1: बेटी,
0: मुर्गा
1: मुर्गी,
0: बकरा
1: बकरी,
0: बालक
1: बालिका,
0: नायक
1: नायिका,
0: दादा
1: दादी,
0: शिक्षक
1: शिक्षिका,
0: शेर
1: शेरनी
0: शेरनी, लड़का लड़की
1: लड़की।
0: यी त प्राणीवाचक भए। अब पुस्तक के लिङ्ग हो निर्णय गर्न सक्छौ?
2: हामी जान्दैनौ मैडम।
0: तिमीहरूले प्राणीवाचकबाट यी कारण त प्राय जानेका रहेछौ, किनभने नेपाली व्याकरण झै यी पनि परिवर्तन हुन्छन्। यसबाट पनि केही नियम म बताउनेछु, तिमीहरूले सुन्दै जाऊ र आफ्ना कपीमा पनि लेख।
1: हुन्छ मैडम।
0: अब सुन, प्राणीवाचकको नियम एकमा लिङ्ग परिवर्तन मे अ मे आ कारन्त लगाकर स्त्रीलिङ्ग बनाया जाता है। जैसे छात्र मे आ कारन्त लगाने से क्या होगा बच्चो?
1: छात्रा।
0: इसी तरह महाशय पुरुष के लिए संबोधन किया जाता है, स्त्री के लिए क्या संबोधन होगा?
1: महाशया।
0: सही कहा। लेकिन देखो महाशया तुम सबने, उसी तरह महाशया में स्त्रीलिंग रूप आकरंत लगाकर महाशया हुआ। इसी तरह महोदय का महोदया होगा, बाल का
1: बालिका।
0: इसी तरह महोदय का महोदया, बाल का
1: बाला,
0: प्रिय का
1: प्रिया। प्रिया।
0: समझे आप?
1: समझी हाँ मैडम।
0: इसी तरह नियम दो है, इया जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। जैसे बंदर
1: बंदरिया,
0: बंदर
1: बंदरिया,
0: ठीक है। चूहा
1: चूहिया
0: चूहिया, बूढ़ा
1: बुढ़िया।
0: समझ में आया?
1: आया मैडम।
0: नियम तीन में आनी लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे नौकर
1: नौकरानी
0: नौकरानी, देवर
1: देवरानी,
0: जेठ
1: जेठानी,
0: सेठ
1: सेठानी।
0: ठीक कहा। यसरी नै नियम चारमा आइन जोडेर स्त्रीलिङ्ग बनाउनु पर्छ। जस्तै पण्डित
1: पण्डिताइन,
0: ठाकुर
1: ठाकुराइन,
0: लाला
1: ललाइन,
0: बनिया
1: बनियाइन।
0: तिमीहरूले बुझ्दैछौ होला?
1: हामीले बुझ्दैछौ मैडम।
0: अब यसरी नै नियम पाँचमा इका लगाएर स्त्रीलिङ्ग बनिन्छन्। जस्तै अध्यापक
1: अध्यापिका,
0: पाठक
1: पाठिका,
0: गायक
1: गायिका
0: गायिका, बालक
1: बालिका,
0: नायक
1: नायिका,
0: साधक
1: साधिका।
0: अब नियम छ में सुनो, कहीं पुरुष में मान की जगह स्त्री में मति लगाकर स्त्रीलिंग होता है। जैसे श्रीमान
1: श्रीमती,
0: धनवान
1: धनवती,
0: गुणवान
1: गुणवती,
0: भाग्यवान
1: भाग्यवती
0: भाग्यवती। अब नियम सात में कहीं वती लगाकर स्त्रीलिंग होता है। जैसे दाता दात्री
1: दात्री,
0: नेता
1: नेत्री
0: नेत्री। बच्चों नियम आठ के शब्द में पुरुष और स्त्री में सर्वदा भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। इस तरह जैसे मर्द औरत
1: औरत,
0: वीर वीरंगना
1: वीरंगना,
0: राजा
1: रानी,
0: कवि
1: कवि
0: कवयित्री
1: कवयित्री,
0: विद्वान
1: विदुषी,
0: सभापति सभानेत्री
1: सभानेत्री।
0: तिमीहरूले यी भनेका लिङ्गका नियम बुझ्दैछौ होइन?
1: जी हाँ मैडम।
2: जी हाँ मैडम।
0: विद्यार्थी नानी हो, मात्र यी कारण त लगाएर मात्र स्त्रीलिङ्ग बनिँदैनन्। यसरी धेरै नियमावली हिन्दी व्याकरणमा छन्। यी जम्मै नियम जानेपछि तिमीहरूले शुद्ध गरी हिन्दी भाषा बोल्न सक्छौ।
2: हाम्रो कक्षा कार्यको निम्ति यो पाठ अति जरुरी छ मेडम, तर छोटो समयमा हामीले स्पष्ट

0: ta bujhna sakeka thienau.
1: Elisa, timile yo bhasha paath arthat linga ka niyamawali bata ke bujhdai chhau?
2: Madam, Hindi bhasha euta hamro rashtra bhasha ho, tara hamima ling gyan ramro sanga najaneko hunda hamilai Hindi bhasha bolda ashuddhi ko samana garnu parcha. Yo hamro durbalta bhayera gaeko chha.
1: हामी जति ठूला कक्षामा पुग्छौं त हामीलाई के हुन्छ?
0: हामी जति ठूला कक्षामा पुग्दै जान्छौं उति नै लिङ्ग निर्णय ज्ञान जान्नु पर्छ अनि यसै कारणले लिङ्ग ज्ञान हिन्दी भाषा पाठमा धेर भन्दा धेर कक्षा कार्य प्राप्त गर्न सके हिन्दी विषय हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होला.
1: तिमीहरूले जो विचार भन्यौ बडो सराहनीय छ. कुनै पनि भाषाको ज्ञान व्याकरणको सहयोग बिना पूरा हुन सक्दैन र नै हिन्दी भाषा पाठ आकाशवाणी गान्तोक मार्फत तिमीहरूले प्राप्त गरेका छौ. राष्ट्रभाषाको प्रचारमा यो कार्यक्रमले ठूलो भूमिका निभाएको छ. विद्यार्थी नानीहरूले हिन्दी भाषा सिक्न बोल्न पढ्न यो एउटा बलियो माध्यम हो.
2: ठीक ठीक भन्नुभयो म्याडमले.
1: आज तुम सब विद्यार्थीका राष्ट्रभाषा के प्रति गहरी रुचि सिक्ने की चाह जानकर मुझे प्रसन्नता हो रही है. बच्चों, हम सब भारतीय है, यह बात कभी न भूले. अपने देश के प्रति यही सच्ची देशभक्ति है. नहीं तो हम सब अपनी अपनी भाषा अपने अपने प्रांत लेकर मरते रहेंगे करते रहेंगे. राष्ट्रभाषा के प्रति सारे देश के विद्यार्थियों को प्रेम होना चाहिए. समझ में आया कि नहीं?
0: जी हाँ मैडम.
1: हम अपने देश पर क्या करना चाहिए? गर्व करना चाहिए. बच्चों, अब मैं लिंग के नियमावली के अनुसार ऐसे शब्द बताऊंगी जो शब्द सदा ही पुलिंग होते हैं और कुछ शब्द सदा ही स्त्रीलिंग होते हैं. इनके स्त्रीलिंग या पुरुष रूप नहीं होते. अब सदैव पुलिंग होने वाले शब्द सुनो. कौवा, चीता, खटमल, मच्छर, झिंगुर, भेड़िया, तीतल आदि. ये शब्द में मादा या नर लगाया जा सकता है, अन्यथा ये पुलिंग या स्त्रीलिंग में एक ही होते हैं. अर्थात एलिसा, तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा?
2: मैडम, तोता शब्द का स्त्रीलिंग भी तोता ही होगा.
1: हाँ, इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं है. पुलिंग में हम पुरुष में भी तोता कहेंगे और स्त्री में भी तोता कहेंगे. शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया. इसी तरह अब मैं सरस्वती से पूछ रही हूँ. कौवा, कौवा का पुरुष लिंग बताओ.
0: मैडम, कौवा का स्त्रीलिंग रूप भी कौवा ही है.
1: कौवा पुरुष लिंग है, पुलिंग है, अच्छा इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कौवा ही
0: होगा.
1: तुम दोनों ने सही उत्तर दिया. इसी तरह कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, मक्खी, कोयल, बटेर, दीमक आदि. सरस्वती, मछली को पुलिंग के हो भनता?
0: मैडम, मछली स्त्रीलिंग हो अनि इसको पुलिंग पनी मछली नहीं हो.
1: ठीक है भने हो. कोयल को पुलिंग के हो एलिसा भना?
2: कोयल
1: को पुलिंग कोयल नहीं हो. इसको पुरुष रूप छैन. कोयल को पुलिंग कोयल नहीं हो रहा है, इसका स्त्री रूप छैन. र कुछ नियम जान लिया है या नहीं?
0: जी हाँ मैडम.
2: जी मैडम.
1: ठीक है. हाँ, अब तो समय भी पूरा होने को जा रहा है, इसलिए दूसरे भाग में हम और लिंग के अप्राणीवाचक निर्णय के बारे में जानेंगे. कुछ ई कारंत के परियोजना कार्य लेकर आप सबको आना है. तब तक के लिए फिर मिलने की आशा लेकर श्रोता समक्ष से हम विदा लेंगे. धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बच्चों.

हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोतागण, अब प्रस्तुत छ एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित एक शैक्षिक कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
0: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
0: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए, इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया। इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा कर

0: करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।
1: स्वयं धूप सहकर तो मैं छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुम्बी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: प्यारा भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासनकाल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां,

जिसमें कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।
2: सुने सुने क्या सुने, सुने।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: Dann rüber, aber auch mal wieder auf, ey! Dann haben wir den, alles über ihn, dann haben wir den, dann haben wir den,
1: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रति

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर बड़े

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: ही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
1: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
0: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
2: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
1: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
0: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
0: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मैसिडोनिया
4: चलो,
3: चलो
0: साथियों।
2: अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
0: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: हाँ, महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो आचार्य,
6: धन्य हो
5: आचार्य,
6: धन्य हो।
7: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: अरे

ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूँ, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था ममता। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे रोशन। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा कि जब रागों की बात करते हैं, खासकर फिल्म संगीत में, तो शुद्ध राग पूरे गाने में शायद ही बजाया गया होता है, क्योंकि कभी कभी कहानी के भावों को विस्तृत रूप से उभारने के लिए स्वरों में फेरबदल भी की जाती है, यानी मिश्रित रागों की धुनें ज्यादा सुनाई देती हैं ताकि गीत अपने भाव को अच्छी तरह से दर्शकों के दिल तक पहुंचा सके। कहने का मतलब है कि रहे न रहे महका करेंगे गीत की शुरुआत पहाड़ी के स्वर के साथ हुई, लेकिन अंतरे में कहीं यमन राग नजर आ रहा है जो रोशन जी का सबसे मनपसंद राग था। आज रागों की अच्छी व्याख्या सभी मित्रों ने की है, धन्यवाद सभी मित्रों का। बिल्कुल, हम तो आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, जो हमारे वो श्रोता इस बात को समझ पाएंगे जिन्हें शास्त्रीय रागों का ज्ञान नहीं है या उनमें उनका क्या कहना चाहिए, उत्साह नहीं है या शौक नहीं है या नहीं जानते वो उसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी गीत जो है एक ही राग पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रागों को मिलाकर भी कई बार इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बता भी दिया है कि फिल्म चांदनी चौक के बारे में आपने पूछा था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, तो मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं रोशन साहब। बिल्कुल सही लिखा आपने। और ये गाना स्मृति विश्वास पर फिल्माया गया था। और आपने ये नहीं बताया कि आवाज किसकी थी, गायिका का नाम भी हमें बताइए तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। वहीं आप लिखते हैं कि दरअसल आज के सारे गाने एक राग पर नहीं है बल्कि एक मीटर पर आधारित है, और आपने किसी गाने का जिक्र भी इस सूची में शामिल किया है। आप लिखते हैं कि आपका पसंदीदा राग, यानी कि मेरा पसंदीदा राग है कलावती, बागेश्री, शंकरा, देस और मालकोस। अच्छा, ये राग आपको बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद। कभी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं, जो जैसा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन है आज का ये सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन की आंखों से जब इस कार्यक्रम को महसूस करेंगे तो शायद आपको भी सफर अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का हमें इंतजार था और अब वक्त यूं ही बीत जाएगा। सुहाना मौसम है, शुभ दोपहर है, साथ ही आपका कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ, यानी मेरे साथ मंदाकिनी दीदी के साथ। प्रस्तुति सुंदर, कर्ण मधुर, मनमोहक है और हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे अंत तक, ऐसा हम वादा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हमारे यहां सचमुच ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बादलों को उड़ाकर ले जा रही हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत।

तो देखा आपने संगीत का असर। हमारे एक श्रोता पूछ रही है कि भाई ये किस फिल्म का गीत है जो अभी आप सुनवा रही हैं। बिल्कुल रहे न रहे हम वाली गीत जैसी धुन का है, जैसा गीत है। हमने आपसे यही तो कहा ना कि कई बार जब हम बहुत ही गहराई से किसी गीत को सुनते हैं, हो सकता है हम उस मीटर को ना समझते हो कि ये गीत किस मीटर में गाया गया है, लेकिन जब हम उसे बहुत गहराई से सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो उस गाने की धुन जैसा ही है जैसा कि अभी हमारी श्रोता ने पूछा। तो हम आपको बता दें, ये आशा भोसले की आवाज में फिल्म नरम गरम से हमने लिया था ये गीत। गुलजार साहब के बोल थे और राहुल देव बर्मन की धुन थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि दादा बर्मन ने 1951 में फिल्म नौजवान में गीत रचा था, ठंडी हवाएं लहरा के आई। लता मंगेशकर की आवाज थी। साहिर साहब के बोलते इस गीत के माधुर्य से प्रभावित होकर दादा के समकालीन संगीतकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में गीत रचा, तेरा दिल कहां है। इसमें आवाज आशा भोसले की है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गायिका आशा भोसले हैं जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन की धुन तो थे ही, लेकिन दादा का गाना संगीतकार मदन मोहन को इतना भाया था कि उन्होंने 1964 में फिल्म आपकी परछाइयां फिल्म में इसका मुखड़ा इस्तेमाल किया। यही है तमन्ना, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया था, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई, संगीतकार रोशन साहब ने इसी धुन को फिर इस्तेमाल किया 1966 की फिल्म ममता में और लता मंगेशकर से गवाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना रहे न रहे हम महका करेंगे। अब ये गीत इतनी प्रसिद्धि देखने के बाद पिताजी की आरडी बर्मन ने इस धुन को आधार बनाकर कुछ गीत बनाए और 1981 में आशा भोसले का गाया फिल्म नरम गरम का गाना हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जो कि अभी आपने सुनवाया, इसी धुन का एक बार और इस्तेमाल किया गया। और 1983 में फिल्म अगर तुम न होते में भी इसी को फिर से उन्होंने दोहराया। बात और आगे बढ़ी और आपने इसी तरह से बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई से इस बात को रखा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं वाकई इस होता उन्हें सुनते रहे तो उन्हें लगा कि अरे ये उस गाने की जैसा ही गाना है। बस यही आज के कार्यक्रम की असली थीम है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था अगर तुम न होते। और मैं हमारे उसी श्रोता की बात को आगे भी रखना चाहूंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रख दी है इस कार्यक्रम के लिए। यूं समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम उनकी लिखी इस इबारत में आ गया है। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि अगर तुम न होते 1983 की फिल्म थी और हमें और जीने की चाहत न होती, बात और आगे बढ़ी और 1985 आरडी बर्मन ने इसी धुन पर बनाए एक और सुपरहिट गाना फिल्म सागर का लिया। और फिर आप लिखते हैं कि आरडी बर्मन के संगीत साम्राज्य के 9 रत्नों में से एक बासु चक्रवर्ती साहब ने भी इस धुन के नोटेशन पे थोड़ा हेरफेर कर 1992 की फिल्म नरगिस में जगजीत सिंह साहब से 2 गाने गवाए थे, कहा था जो तुमने और दूसरा था दोनों के दिल है। और दोनों को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि किस तरह से ये गाने आपस में मेल खाते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, अच्छा अब हमारे सवालों के जवाब आप देने लग गए हैं। आप लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मेरी तमन्नाओं की तकदीर और

तुम अगर मुझको ना चाहो, ये गीत आपको एक जैसे लगते हैं? बिल्कुल देखिए, ऐसा है, यहाँ पर हमें शास्त्रीय रागों पर आधारित एक जैसे गीत नहीं चुनने हैं, क्योंकि वही बात की हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। हाँ, वो क्या महसूस करता है एक श्रोता के तौर पर, एक श्रोता के रूप में, वही काफी है। तो आपको कौन से गीत एक से लगते हैं वही हम जानना चाह रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि ये किस फिल्म का गीत था, बिल्कुल रहे ना रहे हम जैसी धुन, अरे आपने अभी तो सुना था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय थोड़ा कठिन है पर आज गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो भाई सफर थोड़ा कठिन भी तो अच्छा लगता है ना, लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक, हमारे साथ अंत तक चलना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रागों का ज्ञान हो ऐसा नहीं है, रागों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गाने शास्त्रीय तरीके से गाए जाते हैं वो बहुत पसंद है, जैसे कि झनक झनक तोरी बाजे पाई लिया। अच्छा, ये गीत आपको बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी चौक 1954 की फिल्म, ये गाना भी नौजवान वाले मीटर से ही बंदा है, गीत शैलेंद्र, संगीत रोशन, स्वर आशा भोसले का था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चांदनी चौक के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, संगीतकार रोशन साहब थे, गीतकार शैलेंद्र नहीं थे भाई, मजरू साहब थे और संगीतकार रोशन थे और आवाज आशा भोसले की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे राग शिवरंजनी ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ऐसे कई गाने विविध भारती पर सुने जो एक जैसे हैं पर अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वही काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गिटार के साथ पियानो का प्रिल्यूड राग पहाड़ी है चांदनी चौक, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, एसडी बर्मन के नौजवान के गाने से जबरदस्त शुरुआत हुई और सभी की पसंद का सम्मान किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसा ही एक और गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम सागर। अब थोड़ा सफर हल्का हुआ ना, कठिन नहीं है ना?

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मैं शास्त्रीय रागों के मामले में अनाड़ी जरूर हूं, कोई बात नहीं, परंतु मैं सच कह रहा हूं कि महकते हुए अच्छे श्रोता की तरह सुरीला सफर प्रोग्राम में आप द्वारा सुनाए जा रहे अनमोल गीतों का मैं आनंद जरूर ले रहा हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इतनी समानता सब धुनों में, मजे की बात है, सबकी खुशबू अलग अलग है, कमाल है हमारे भारतीय संगीत को और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का विषय वस्तु संग ताल मिलाकर श्रोतागण भी सक्रिय हैं और बराबर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद के गीत लिखे हैं कि वो उन्हें एक जैसा लगता है, आज मौसम की मस्ती में या दो बदन प्यार की आग में, इस तरह के गीत उन्हें पसंद आते हैं और वो एक जैसे उन्हें महसूस होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर का विशेष आकर्षण है फिल्म ममता का अमर गीत रहे न रहे हम। संगीतकार रोशन ने इस गीत में राग पहाड़ी के स्वरों का अत्यंत सटीक, संतुलित और सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया। यही कारण है कि यह गीत केवल अपनी मधुर धुन के लिए नहीं बल्कि राग पहाड़ी की आत्मा को सहजता से अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ए मेरे हमसफर ए मेरी जान ने से मिलता जुलता गाना है हसीना जाने जा जाने मन, ये गाने हमें सिमिलर लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गजल तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से और जॉय मुखर्जी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का की गजल हमको तुम्हारे इश्क ने, ये हमें अच्छे लगते हैं और सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं पर तो बहुत सारे गीत बने हैं और क्या ही अच्छा हो जब आप हवाओं पर कुछ कार्यक्रम पेश करें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत कुछ अलग तरह की दी है, इसलिए पहले मुझे घर की बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय ऑफिस में पीनी होगी ताकि मेरे दिमाग का केमिकल लोचा एक्टिव हो जाए और मैं सही कमेंट्स लिख सकूं, क्योंकि रागों के मामले में मैं अनाड़ी हूं। मैं एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य वही है जहां प्रतीक्षण नवीनता हो। वास्तव में चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि इसकी रचना शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के आधार पर होती रही है। संगीत निर्देशकों ने श्रोताओं की रुचि को ऐसे संगीत का सृजन कर छोड़ा है जो कहीं पर पूर्ण शास्त्रीय संगीत में रचे हैं, कुछ उपशास्त्रीय तो कुछ लोक संगीत में, और इनमें कहीं कहीं पर प्रयोग के तौर पर पार्श्व संगीत और गौण धुन का बेहतरीन संयोजन किया गया है। ध्यान रहे कि गौण धुन मुख्य धुन को दबाती नहीं है बल्कि एक नया संगीतमय रंग और गहराई जोड़कर उसे और आकर्षक बना देती है। कितनी सुंदर और शानदार बात आपने लिखी है। और अब इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यार का तराना। इस गीत के बारे में आपको मालूम था?

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म प्यार का तराना का ये गीत सुना और आज का ही कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप समझ गए आज के इस कार्यक्रम का मर्म क्या था। जी हां, राग पहाड़ी से प्रभावित होकर अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने जो गीत रचे और उसमें अलग अलग शास्त्रीय रागों को पिरोकर एक ही मीटर में जो संगीत हम तक पहुंचाया उसी को आज आप तक लाना हमारा उद्देश्य था। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आपको ये कठिन सफर आज का कठिन नहीं लगा होगा। मुझे लगता है कि अब सफर के आखिरी सोपान पर हम मिल रहे हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं यानी सफर से इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगम्बर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार

0: उपमंडल पश्चिम बंगाल सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है ये पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार उपमंडल पश्चिम बंगाल सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला सोलन व सिरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा मंडी शिमला सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोतागण, समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार अपराह्नको 2:30 भइसकेको छ र अब यहाँहरूलाई मनोरञ्जन गराइरहेका छौं विभिन्न कलाकारहरूको आवाजमा सज्जितका विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू सुनाएर। त यो पहिलो लोकगीत सुनौ कलाकार आशिष भण्डारीको आवाजमा।

719 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर दिन के 3 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, आज साल 2026 में हमारे पास बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और दिल की बात कहने के लिए इमोजीज हैं। सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है, लेकिन जरा सोचिए, आज से 60 से 70 साल पहले यानी 1950 और 60 के दशक में जब ये

0: सब नहीं था तब लोग प्यार कैसे करती थी, उनके दिल की बातें कहाँ होती थी। आज मैटिनी मेलोडीज के इस बेहद खास शो में मैं आपको लेकर चलूंगी उन छह खास ठिकानों पर जो 50 और 60 के दशक के रोमांस की जान हुआ करती थी। तो चलिए यादों के इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ और चलते हैं हमारे
1: साथ। मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेता के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में सरकार को अपना जवाब सौंप दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब कल रात प्राप्त हुआ था और वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है। इस महीने की पहली तारीख को सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर को लागू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी कर मामले पर परामर्श पूरा होने तक इसे लागू न करने को कहा था। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर कल और रविवार को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक एक दिवसीय टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi arrived in Auckland today on the final leg of his three-nation tour, where he received a warm ceremonial welcome from New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The two leaders shared a warm embrace as Prime Minister Luxon personally received Mr. Modi on the red carpet at Auckland Airport. Prime Minister Modi was accorded a ceremonial reception on the tarmac with representatives of the Indian and New Zealand armed forces in attendance. Earlier, Prime Minister Modi officially concluded a historic high-stakes state visit to Australia, leaving behind a future-proof blueprint for the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. From high-powered boardrooms to iconic landmarks, this intense itinerary systematically advanced diplomatic, economic, and

गीतों के कार्यक्रम का, जिसका नाम है मन भावन। जी हाँ, यानी कि आप वो गीत सुनते हैं जो भाते हैं आपके मन को। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने फोन के साथ, अपने ईमेल के साथ, ताकि आप अपनी पसंद के गीत की फरमाइश हम तक पहुंचा सकें। आपको पता है कैसे आपको अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है? fmgoldair@gmail.com पर आप ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश अपने नाम के साथ, शहर के नाम के साथ हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, fmgoldair@gmail.com। मैं पहुंचाऊंगी आपके पसंदीदा गीत आप तक। स्वागत करती हूं मैं रुचिका आप सभी का। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz।

जी हाँ, ये खूबसूरत गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, और फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। यदि आपकी कोई पसंद है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं, fmgoldair@gmail.com। और देखिए कितनी सारी फरमाइशें, कितने सारे ईमेल्स जो हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र, उमेरखड़ महाराष्ट्र से हम तक संदेश पहुंचा है। अभिजीत राही का, इनके साथ हैं श्रीमती सरिता गुहानकर और साथ साथ सिद्धांत, प्रणीता, लाडला, टुकटुक, एकांश, सुमित, कुमारी, ध्वनि, इनका पूरा परिवार जो है वो हमें सुन रहा है। और एकाशा भोसले जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश हम तक पहुंचाई है। और साथ साथ आपको बता दें, बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं। फिल्म दो बदन का भी एक रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा है, महाराष्ट्र से ही इनका संदेश हम तक पहुंचा। विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर का संदेश हम तक पहुंचा। और देखिए और किसका संदेश हम तक पहुंचा है, भाई हरजिंदर सिंह भाटिया जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया भी हैं, इन्होंने भी जमशेदपुर से इनका संदेश पहुंचा है हम तक। ये भी एक गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं। और देखिए एक बार फिर से विजय जी का संदेश हम तक पहुंचा है। और ताज मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, हरिद्वार से इनका संदेश हम तक पहुंचा। और कहते हैं कि हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ आप शामिल कर लीजिए। तो चलिए, हमने आपकी फरमाइश और आपका संदेश दोनों ही शामिल कर लिए हैं। फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं आशा भोसले जी की आवाज में ये सुपरहिट गीत।

जी हाँ, बहुत सारे संदेश, बहुत सारी फरमाइशें जो हैं वो आपकी हम तक पहुंच रही हैं। और देखिए, हम तक संदेश पहुंचा है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का चंडीगढ़ सिटी से, और फरमाइश भी इन्होंने की है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में एक खूबसूरत गीत की। और लिखते हैं कि प्रोग्राम में रुचिका जी आपका हार्दिक अभिनंदन है और FM गोल्ड के लिए बेशुमार मोहब्बतें। भाई क्या बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप FM गोल्ड के लिए इतनी अच्छी और प्यारी बातें आप लिखते हैं, और FM गोल्ड का जो साथ है वो आप हमेशा निभाते हैं। इनके अलावा देखिए और भी बहुत सारे संदेश हैं। मोहम्मद सईद अबासी का संदेश हम तक पहुंचा है, इनके साथ है निकट परवीन अबासी और इनका पूरा परिवार, कहां से, बुलंद शहर से इनका संदेश हम तक पहुंचा। और संजय ढींगिया का संदेश हम तक पहुंचा है, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया इनके साथ हैं, उत्तर प्रदेश बागपत से इनका संदेश हम तक पहुंचा। और रोहित बेलदार हमारे साथ हैं, इनके साथ फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, आसमा वली बेलदार और डब्लू वली बेलदार, कहां से, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इनका संदेश हम तक पहुंचा।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन आपके साथ है। और यदि आपकी भी कोई फरमाइश है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं FM Gold AIR Delhi @gmail.com पर।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन भावन जारी है, जिसमें मैं आप तक पहुंचा रही हूँ आपकी पसंद के गीत। यदि आपकी भी कोई पसंद है, कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और देखिए आपके कितने सारे संदेश जो हैं, कितने सारे ईमेल्स हम तक पहुंच रहे हैं। देखिए, प्यार भरा नमस्कार आदरणीय प्रचारक महोदया जी, सुनना चाहते हैं कौन है भई ये, सबसे पहले आपको ये बताएं। शेगांव बुलडाना महाराष्ट्र से इनका संदेश हम तक पहुंचा है। संतोष एस काले, तेजस एस काले का संदेश है ये। फिल्म आया सावन झूम के फिल्म का मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुनना चाहते हैं ये एक गीत। और देखिए, उत्तर प्रदेश से हम तक एक और संदेश पहुंचा है। किसका पहुंचा है भाई? फरुखाबाद से असलम मंसूरी और फहीम मंसूरी का संदेश पहुंचा। लिखते हैं कि नमस्कार जी, मन भावन प्रोग्राम मैं भी सुन रहा हूं। जी, आप सुन रहे हैं, हमें पता है और हमने आपका संदेश शामिल भी कर लिया। तुलसी मस्कीन का संदेश हम तक पहुंचा, इनके साथ हैं वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना कहां से, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से इनका संदेश पहुंचा। और लिखते हैं कि भाई होस्ट रुचिका जी, यही साथी यही मीत दर्द कांटे गीत संगीत, मेरे मेल पर भी गौर फरमाइए, अभी तक आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। देखिए भाई, हमने रिप्लाई कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई शिकायत है तो आपके पसंद का जो गीत है वो आप तक पहुंचाकर हम उस शिकायत को दूर करेंगे। संदीप मक्कड़ का संदेश हम तक पहुंचा है। कहां से ये संदेश हम तक पहुंचा है? जालंधर से इनका संदेश हम तक पहुंचा है और इनके साथ हैं भरत और कमला भी। और भी बहुत सारे संदेश देखिए। लता मंगेशकर के आवाज में सुनना चाहती हैं गीत। पंजाब से इनका संदेश पहुंचा है। भवानीगढ़ संगरूर से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब इतने दूर दूर से आपके संदेश, आपकी फरमाइशें जो हैं वो हम तक पहुंचती हैं। गुजरात से एक संदेश हम तक पहुंचा है, अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश कुमार का। इनकी भी एक फरमाइश है, फिल्म सत्ते पे सत्ता और गीत है मौसम मस्ताना। देखिए, ये जो गीत है ना, इसकी फरमाइश हर मन भावन कार्यक्रम में हम तक पहुंचती है और लगभग ये इस मौसम में ये गीत हमें सुनने को मिल ही जाता है ना। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश का एक बार फिर से संदेश हम तक पहुंचा है। मोहम्मद सईद अब्बासी का एक बार फिर से हम तक संदेश पहुंचा। और कौन है हमारे साथ? कोल्हापुर से हैं संभाजी सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार का संदेश हम तक पहुंचा और एक गीत भी सुनना चाहते हैं, ये फिल्म फूल और कांटे से। और भी आपके बहुत सारे संदेश हैं। देखिए, संदेश हम तक पहुंचा है हर्षित, हीना, हेमलता और खुशी गोस्वामी का, राजस्थान गंगानगर से। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया संदेश पहुंचाने के लिए और मैं आप तक पहुंचा रही हूं आपकी पसंद के गीत। एक ईमेल आईडी एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं। बहुत सारे संदेश आपके हम तक पहुंच रहे हैं। संदेशों के साथ साथ बहुत सारी तारीफें भी हैं और शिकायतें भी हैं। बेंगलोर से संदेश हम तक पहुंचा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष का। लिखते हैं, FM गोल्ड के प्यार का मारा हूं मैं, सिकंदर हूं पर हारा हूं मैं, न जाने क्यों जलने लगे वो मुझसे, जब से उनकी आंखों का तारा हूं मैं। भाई इतनी खूबसूरत बात आपने लिखी, FM गोल्ड के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ एक शिकायत भी है कि आप जो हैं हमारा संदेश शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जो 15 से 20 मेल करते हैं उनके ही आप संदेश शामिल करते हैं। देखिए यही जो है समस्या होती है, जब आप 15-20 मेल हमें करते हैं, इतनी लंबी लिस्ट हम तक पहुंचती है कि कंफ्यूजन होती है कि किसका मेल हम शामिल करें और किसका नहीं। इसीलिए हमारी गुजारिश हमेशा यही होती है आप सभी से, श्रोताओं से, कि एक या दो मेल्स आप हम तक पहुंचाएं, ताकि जो भी हमारे सुनने वाले हैं के सभी मेल्स, उनकी सभी फरमाइशें हम अपने प्रोग्राम में मन भावन में शामिल कर सकें। और फिलहाल स्वरूप आनंद सरजल का संदेश हम तक पहुंचा है और एक फरमाइश भी इन्होंने की है। कहां से इनका संदेश पहुंचा है भाई? सीजी इन्होंने लिखा है। लिखते हैं कि पूरा जो परिवार है उनका वो FM गोल्ड सुन रहा है। और साथ साथ सनावत से शेख मुसा मोहसिन का संदेश हम तक पहुंचा और लिखते हैं कि आप खैरियत से हैं, दुआओं में हमें याद रखना। और एक फरमाइश भी इन्होंने हम तक पहुंचाई। और किनका संदेश हम तक पहुंचा है? और भी बहुत सारे संदेश हैं। देखिए, आलिया अंसारी, लुबना अंसारी, अनवर मोहम्मद कैफ, रियाज आफताब अंसारी, इन सभी का संदेश हम तक पहुंचा है उत्तर प्रदेश से। और सारिका सुतार चेतन और संभा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोल्हापुर से। इनके अलावा शकुंतला यादव गरिमा और उग्रसेन यादव का संदेश हम तक पहुंचा है नई दिल्ली से ही। आफताब अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके भी संदेश। देखिए कितने सारे संदेश हम तक पहुंचते हैं ना, एक ही ईमेल जो है वो बार बार आप हम तक पहुंचाते हैं, इसीलिए बाकी के संदेश हम शामिल नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे संदेश पहुंचे हैं। और देखिए किनका संदेश है, लखनपाल रंधावा और सुरिंदर कौर रंधावा का एक बार फिर से संदेश हम तक पहुंचा है। उत्तम कुमार का संदेश पहुंचा, इनके साथ है।

श्वेता किशु अरसव और सत्यम आनंद झारखंड से और पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का संदेश हम तक पहुंचा। और भी बहुत सारे संदेश हैं, देखिए एक और संदेश है, किनका संदेश है, सचिन खोरवाल हैं और जयराम हैं दिल्ली, उत्तम नगर दिल्ली से इनका संदेश हम तक पहुंचा है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने संदेश पहुंचाने के लिए, फरमाइशें पहुंचाने के लिए, और साथ साथ हमें उम्मीद है कि जो भी आपकी शिकायतें होंगी वो हमने दूर करने की कोशिश की होगी।

अभी आपने सुना फिल्म घराना का गीत। इस गीत में बच्चे अपनी रूठी हुई दादी को मना रहे हैं और दादी जब तक नहीं मानती है तब तक मनाते रहते हैं और अंत में दादी मुस्कुराकर मान ही जाती है। बच्चे माफी भी मांगते हैं और दादी को कहानी सुनाने की फरमाइश भी करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जब कोई हमसे रूठता है तो वो असल में हमसे दूर नहीं होना चाहता, वो बस यह देखना चाहता है कि हमारे दिल में उसकी कितनी अहमियत है। रूठना इस बात का सबूत है कि रिश्ता अभी जिंदा है और उसमें सामने वाले की भावनाएं जुड़ी हुई है। हम अक्सर उन्हीं से रूठते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। बातें बहुत हो गई मेरी बकबक सुन के, कहीं आप हमसे रूठ ना गए होंगे। इसलिए अभी सुनते हैं फिल्म 1942 लव स्टोरी का यह गीत कुमार सानू की आवाज में, और इस गीत को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, गीतकार है जावेद अख्तर।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म 1942 लव स्टोरी का गीत। आपको बता दे, अगर रूठना एक कला है तो उससे भी बड़ी कारीगारी है मनाना। जब आप झुककर किसी को मनाते हैं तो आपका ईगो हार जाता है और आपका प्यार जीत जाता है। बस एक प्यारी सी मुस्कान, एक छोटा सा सॉरी या बस एक जादू की झप्पी किसी भी बड़ी नाराजगी को पल भर में खत्म कर देती है। इसलिए हम यहाँ से गुजारिश करते हैं, अगर आपसे कोई रूठा हुआ है तो उन्हें अपनी ईगो को साइड में रखते हुए मनाइए, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें खोना नहीं चाहिए। किसी भी इंसान को रूठकर दिल से बाहर ना करें, क्योंकि जब वो एक बार चले जाएंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप अपने रूठे हुए यार को व्हाट्सएप में सॉरी लिख के जरूर भेजिए और अपना संबंध फिर से हरा भरा कीजिए। बातें होती रहेंगी, अभी सुनते हैं राम लखन फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मनार उदास की आवाज में। इसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। चलिए सुनते हैं ये प्यार से भरा गीत।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म रामलखन का गीत। इस गीत में जैकी सर्फ और डिंपल कपाड़िया एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए दिखते हैं और लड़की लड़का का इंतजार करते करते थक जाती है और लड़का यानी जैकी कहते हुए दिखते हैं, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। सच में भी ये इस गीत की भांति प्यार में जब दो इंसान होते हैं तो एक दूसरे का इंतजार करते हैं, कॉल या मैसेज का इंतजार करते हैं। यदि वक्त पर मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो रुक जाते हैं, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हो जाती है और इसलिए रिश्तों में कभी कभी खटास आ जाता है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन उस खटास को हमें लंबे समय तक खींचना नहीं चाहिए, अगर खींचेंगे तो हमारा रिश्ता भी वहीं टूट जाएगा। बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अभी सुनते हैं फिल्म कोरा कागज का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीतकार है MG हर्षमल। चलिए सुनते हैं ये प्यार से भरा गीत।

0: दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म कोरा कागज का गीत। रिश्ते कभी भी सीधे रास्ते की तरह नहीं होते, उनमें थोड़े मोड़, थोड़ी खट्टा मीठा तकरार और थोड़ा रूठना मनाना बेहद जरूरी है। रूठना एक तरह से ये याद दिलाने का तरीका है कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मुझे थोड़ा और प्यार दो। दोस्तों अब इसी के साथ सुनते हैं फिल्म आस का पंछी का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, जिसे संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीतकार है हसरत जयपुरी।
1: मैं मनाता रहूं तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

0: भूसिंह लगाउन मेन फिल्ममा बोरेमा मेन्सामसा कि अब के मेन्सामसा अब खेल मेन चाहिँ मेन्सामसा अब खेल चाहिँ थे मेखिममा मेचिङ भा मेखिम चोक मैले थे बुङ भा खनबट्टी मुन्दन बेग्ल एकदमै मन भकेरी कुसेन गरी यार बुङ यम कन टेम धा बुङ लब खे कि बुङ यम र कुसेन गरी बुङ बेन चाहिँ थे बुङ बेन चाहिँ म कन र मिमजी म र चाहिँ कैसम मेमाङ मेथे सिंह चाहिँ मिमजी बट्टी उमसिर बिछिले बेल चाहिँ त थिले नि मिमजी बुङ न खेल्न यम गम बे खन चाहिँ नमा यम अतिथि खुन्ची तुम्सी तुम्सी त्यो मुहा के के गङ्ग बोल मा गएर बोक्नु बेग्ने चाहिँ खन के बोक्नु चाहिँ भात कुसेन गरेन
1: बेग्छन् र शिक्षा बारेङ आखेन गेम खरागे राख्दौ वा बेघर
0: गेम ग अरङ्ग तानम्बा थिबुङ नु तान्दिक प हमेन नम बिनम दा त तंग लाग्दौ वा गु भयम
1: कुसेन
0: कुसेन नंग लाग्दौ वा
1: कुसेन थिक नु कुरेन थिक पा म
0: कुरेन थिक कुसेन थिक लाग्दौ सि को सि खेंग ल बिम को सिन दो कि बे फेल ल बे गुहा ले दे गुहा लेम दे ने न अनङ्ग तेम तेम बेन जिके थुम्बा कमु फु खन र तान्दि यम दिखो दे लखन ता जेंग म को फुंग सि म वा यम
1: ए र म र शिक्षामरे बात भएपछि आखेन र सिक्काङपो आखेन त नुगपीमा चाहिँ अब र खन्नु गपीमा लागि नभए सेन त नाङ खेममा बोखे मेल नोरिका निङवा युङमा बोखे खाएको निसिक तर नगपीमा बोखे
0: खेल डिसिप्लिन पा नभएपछि हेमाम्बे खेममा तु बुङ ल ठिकाङ बिप्रिमेन्टी हेमा बात खेम दे गर आफू नुङमा सुक्तेपा
1: हो লোকম সনবি ইয়াকুংলে বিবি ফুরুম্ব হাঙ ইয়ারাক সামদাং মতং সিংসাই সোম লার বেন কম তনসু চৌম বেড়ি গর কন নিংসাই সোমিন ক্যারেক কম তনসু চৌকমা থেয়ং বেলে ইয়াম মিলে কুসুম মিলে চুগুলে তাই এম কন কিয়াক লকিন তন দুম বেড়া আইন বানু সিজান থিম বেচুরে ইংসে বুংবা মুখলে পিছু ইউনবা গানি মুক্তং সুমবং পে মু পেক মাই তু আল্লাহ নিয়াং কম তান্দি খারাকলে লাগি সেমুই নাক তিগে আল্লাহ সফাং পাঙ্গেন মিন্ত মুদেন থিম বে হেকসিন কন কান্দ ইং সেবু হিমলো সেমুই সেবারো

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड।
2: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रबाट हिन्दी भाषामा समाचार। हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं र अब प्रस्तुत छ ग्रामीण कार्यक्रम।

0: सम्बद्ध क्लबहरूसँगको समन्वयमा आज सिक्किम पर्यावरण पर्व 2026 को एक भागको रूपमा सिक्किमका सबै जिल्लाहरूमा राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियान सफलतापूर्वक आयोजना गर्यो। सिक्किम सरकारले एकदेखि 14 जुलाईसम्म सिक्किम पर्यावरण पर्व घोषणा गरेको छ, जुन पर्यावरणीय संरक्षण र दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न समर्पित राज्यव्यापी पर्यावरणीय अभियान हो। सिक्किम ब्याडमिण्टन संघका प्रमुख संरक्षकको रूपमा पनि काम गर्ने मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको दूरदर्शी पहलबाट प्रेरित भएर राज्यभरि आफ्नो ब्याडमिण्टन समुदायलाई परिचालन गरेर यस महान अभियानमा बीएएस सम्पूर्ण हृदयले सामेल भयो। आगामी 212 भानु जयन्ती समारोहलाई भव्य गरिमामय र ऐतिहासिक रूपमा मनाउने उद्देश्यले नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमको मुख्यालयमा परिषदका अध्यक्ष हरि ढुंगेलको अध्यक्षतामा विभिन्न जातीय सामाजिक सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समन्वय बैठक सम्पन्न भयो। परिषदले सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी तथा नेपाली भाषी समुदायलाई समारोहमा उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि हार्दिक आह्वान गरेको छ। पाकिम जिल्लाको कृषि विभागले डिक्लिङ पाचेखानी राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा तथा पोषण मिशन अन्तर्गत धान प्रदर्शन सह खेत रोपाई सफलतापूर्वक आयोजना गर्यो। कार्यक्रमको उद्देश्य वैज्ञानिक धान रोपाई प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्नु थियो। आकाशवाणी गान्तोकबाट प्रादेशिक समाचार पूरा भयो।
1: अरिन मोङसित गङदो गुमो लुन्चित सेनङ उ पिचिङ रङ मिलम गुलन कृथक प्रेमसिंह तामाङ ने नेशनल फिश फार्मर्स डे सा चिमचित का रेन्जोङ लेपका मिनोर बुबार का युगमान बुसोङ का सिमसो माथंगम रेन नांगसिंह यत युगमान बुसोङ रेम रेन्जोङ जुंथुक लमनन खतेत लेन्त बुसोशी बुसुंगंगम सिलगुरी का मुनहाम बुस रेन्जोङ मु कृतेत ने यत युगमान बुसोङ रेम आजत दिंथ बोथम बु निहंगम कृतज सा लम्यू लम्नेन मूसा मुदुकबु टोंगपोंग सेका ट्रट मू उलुमदो थन ब्लोंगपोंग रेमला पन थुबु सुंगुंगुम प्रधानमंत्री मत्स्य संपद्या योजना सा शब सिद्धाम का गुलोन कृथक प्रेम सिंह तामंगनेन ल्यांगजुंग रेम जमतोंगपोंग बुसो शिबोदन हंगुम पुणे सा छत्रपति शिवजी स्टेडियम का मुन्थुबु फुंगुबु नेशनल टेकुंडु पम्से च्याम्पियनशीप 2026 सा सिक्किम्स फादर्स डॉटर ड्यू ग्रान्ड मास्टर रेन त्रिलोक सुब्बा उन रेन्यू आद्यावती सुब्बानन ल्याङजुङ रेम जेर उन कम्सा मेडल बुरहोङ थोम्बो निहंगम रेन त्रिलोक सुब्बानन गान्बु तुजी सरेत रोक थे बेग का मुन थोम्बो पोंगपेट का कुकुबु डेन ब्ल्याक बेल्ट डुबखत हंगम हुदोसा तुयुगुब आद्यावती सुब्बानन साम्फ्रोनबु रोथ डुबखत हंगम त्रिलोक सुब्बा नांगसिन हुयुनेन डुपथम्बु थुपकोनेन सिगदुम पबार टेकोंडु पोमसे च्याम्पियनशिप्स सरे लाद्बु लाबो चुगविम कोरिया कांगुनशिबु थुपेका थुंगम प्याखत थुबु दिनहंगम एसएफए यांगने द सिक्किम फुटबल एसोसिएशन नन सरोंग 2026 सा थुंगप्याक कार्चु न्याथम्बु निहंगम उन एसएफए डिविजन लीग सा रोंग रिंगलत माथंगम लीग आरे लादबु छकतीत रोका अछकती नन पोंगपेत का आका लियो शिबु निहंगम रेन नांगसिंग जोंगरी एफसी उन नेत आल अछक पोंगन लादबु पोंगपेत का आका लियो शिबु दनहंगम ओलोम दो सिक्किम सिक्किम पुलिस एफटी सिक्किम ब्रदरहुड एफसी सिक्किम आक्रमण एफसी गैंगटोक हिमालयन एससी हॉर्लर्स स्पोर्टिंग सिंगताम सांग मुत्संग मुस्तांग फुटबल क्लब रेड पांडा एफसी सिक्किम बॉयज एफसी निहंगम रेन शेरपान सिक्किम प्रीमियर लीग लम दुथम बु संग्रेम अलेम का अकालियो मुथुब जोंबु रिंगफ्यत लुथुबुंगम ए आई एफ एफ नांगसिंग गन आदिंग अलेम गोंगतुब सा पालजर स्टेडियम का मुंशीबु दनहंगम गनख्यप गारनोंग नांगसिंग एस एफ ए वुमेन्स लीग सातन का ताजिक मातबु सुंगुंगम BAS Yangne Renjung Sa Badminton Association in Liangjung Dip Tunen Katlet in Varto Genpong Liangjung Pubat Tianglet Satope Yangne Sikkim Paryavaran Parva Sunghungum Renjung Jungthup Nin Are Ladbu Tse Katlom Kuti Fuli Thap Sungdit Sikkim Paryavaran Parva Linen Dinhungum Yangjung Pubar, Barto, Gyotong Pong, Ulumdo, Tarbot Pongrem, Sakjik, Mat Thombu, Dunhungum.

0: प्रेम सिंह तामंग सिरेनिन रेंजोंसा बैडमिंटन एसोसिएशन का चीफ पैट्रन सगिन लियोथोम बु बैडमिंटन रेमल्यांगजुंग पुबार बुफेल सिबु जुकाप थोबुंगम काउंसिल सठी डॉक रेन हरी डुंगेलसा शॉप सिगडाम का रेंजोंसा लुम साहित्य परिषद नुजुम थोबुंगम टुजुम मुदुकबु मिचोक आलोक इन रिमोमसा थोपे पोंगा मुनंगम टुजुम का अलेम पोंसा थोपेसा पेडिक गनसोंग सुंगलत पोंग दियम थोबुनी हंगम सुंगलत आरेका गनसोंग लुम आरिंग जोकाम्बु मिचोक पोंगरेम आका लियोबु योंग लाबदन फुहंगम पाक्योंग ल्यांगदेसा न्योत्योक बोंगचिनिन एनएफएसएम राइस शॉप सुगदाम का डिक्लिंग पाचे खानी का पैडी डेमोन्स्ट्रेशन कम खेत रोपाई थोपे थोबुंगम थोपे सा जुकाप्रे जो पो थ्यांगशीबु थामजु यमतन पोंगबु सोशंगु थोमो न्योत्योक बोंगची सा जुंगपुन सोंगनिन जो थ्यांगशंग लाभथोंबु निहंगम न्योत्योक्रेम अथो रोथो का बुसोशंग उलोमदो हुयुसा निमलत निन बोंगची पोंगरेम आर्यम पेचोनियत खो थोंबु निहंगम लुंचित आबिदो छोंगमो
1: दे लुंगटेखा गातुई थारीगेने चुल छुकिला डेंजुंग पचाले सेम्बना चचिलेम्पो प्रेम सिंह तामंग की डेंजोंग थांग जामलिंग की थामचे न्या शिंपो थांग न्याई चोंग्युर यांगना फिश फार्मर्स एंड फिशरीज तुलो नेशनल फिश फार्मर्स डे ना ताशी दिले फिबोइन खोंग की सुंगबोइन डेंजोंग जुंग दे न्या शिंपो चुई थेनलो इंग्री चेन इन चचिलेम्पो की नाची शिंपो चुलो शिलगुरी ना थेन ये पे थीतेन दी ना डेंजोंग ले रेनबो ट्राउट ग्यालखाप नांगी नाचोक चु येसो ना थांगपो शिकते थपो इन थांगखोंग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मुख्यमंत्री मत्स्य उपधन योजना दिचुना रिक्सार तेंगलो थीछे ताबु नांगशे इन से शुभइन डेंजों की याप फुमो नीजेन यांगना फादर डॉटर डुओ ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा थांग मिस अद्वेती सुब्बा की नादे लो इंदा दिन पे छे गेले चुकची सा पुणे छत्रपति शिवाजी स्टेडियम ना थेन येपे नेशनल टेक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप नितो निशु चाठू ना सेर थांग नी तकमा गेदी बाहुंगबो इन ग्रैंड मास्टर खने ना येपे त्रिलोक सुब्बा एथ डैन ब्लैक बेल्ट की गेनबो फुई अंडर 60 इंडिविजुअल पोमसे एनगाक ना ग्यागर गी डाक्शो डॉडेन मिचुई फामतोदी सेर तकमा थपनी नांगजिन खोंगी सेमो अत्वेती सुब्बा थर्ट डैन ब्लैक बेल्ट की सीनियर वुमेन्स अंडर 30 इंडिविजुअल पोमसे इंखाकना नी तकमा थपनी नांगबो इन दिले त्रिलोक सुब्बा गी सुंगबो इन खोंगी डुबदे दी इंदा गुपे लो कोरिया ना थेन येपे वर्ल्ड टेक्वांडो पोमसे चिदेन गी थेन लो चक्थी कर खेचेन खम इन से शुभ इन थारिंग गातो सिक्किम फुटबॉल हाउस एसएफए ना थेन येपे सिक्किम प्रेस कॉन्फ्रेंस गो एसएफए गी नितो निशु चाठुक पे कांची छेथो यांगना फुटबॉल कैलेंडर की गोफी बेने फ्याजिन एसएफए ना ए डिवीजन लीग की यांग गोचुगनी ख्याबदे फ्याबो इन दालम न्यामपो शेदे जिन एसएफए की थांगपेन टूचे फुरबा शेरपा की एसएफए ए डिवीजन लीग ने इन द दिनपे छे चुडू ले गोचुक्षे इन थांग देचेन चुथाम्बा छेंजे थेन लो डेनपो क्याप्से इन खोंगी सुंगबो इन जोंगरी एफसी थांग नॉर्दर्न ईस्ट एफसी दिचु लो दी की थर्डेन ना सार्पो चेदेन इन थांग जेन चेदेन ने सिक्किम पुलिस एफसी सिक्किम ब्रदरहुड एफसी सिक्किम आक्रमण एफसी गेंटोक हिमालयन एससी हाउलर्स स्पोर्टिंग सिंगताम सांग मुस्तांग एफसी रेड पांडा एफसी सिक्किम बॉयज एफसी चु इन दिले मिस्टर शेरपा की ख्याप्दे बेने दी नांगबो इन सिक्किम प्रीमियर लीग ना चिखेन चु ए आई एफ एफ की सार्पुर टीम नांगतार ए डिवीजन लीग ना शुक मिथप थांग चेडेन दिचु गातो पालजर स्टेडियम ना थेंचे इन दी लो खोंगी एस एफ ए फुम दिचु इ थेन लो यांग डोदेन थेन वे थेन लो थादी थेन ये थांग दी थेन लो थारुंग खेसेल माला रा फिंचे इन से शुभ इन बी एस यांग ना बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ सिक्किम की चिकदम थांग थाको

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विम्बलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार

0: व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रूपये पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केन्द्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।